ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी का कहना है कि सऊदी अरब में एक पाइपलाइन पर हमले के बाद बुहैरा अहमर के एक बरामदी मरकज पर तेल की भराई मुअत्तल कर दी गई है। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता जुमेरात को ड्रोन हमलों से नुकसान पहुंचने के बाद बंदरगाह यांबू तक खाम तेल ले जाने वाली पाइपलाइन को आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। इस पाइपलाइन को अपना हुरमुज के मुतबादल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। रॉयटर्स ने मंगल के रोज जहाजरानी की सनद के जराए का हवाला देते हुए खबर दी कि सऊदी अरब ने यांबू पर तेल की भराई मुअत्तल कर दी है। पड़ोसी मुल्क यमन में हौसी बागी सऊदी हिमायत याफ्ता अबूरी हुकूमत के खिलाफ अपनी जारहियत बढ़ा रहे हैं। ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं ने अपना कंट्रोल बुहैरा अहमर में बहरी जहाजरानी की अहम बंदरगाह आबनाए बाबुल मंदब के आसपास के इलाकों तक फैला दिया है। हौसियों ने बुध के रोज एक बयान में दावा किया है कि उन्होंने एक सऊदी F-15 जंगी तैयारा मार गिराया और यांबू में तेल की एक तनसीब को बैलिस्टिक मिसाइलों और दीगर हथियारों से नुकसान पहुंचाया है। नेशनल पुलिस एजेंसी के माहरीन के एक पैनल ने जापान के सिक्योरिटी के शोबे में काम करने के लिए मखसूस महारतों और दीगर अहलियतों के हामिल गैर मुल्की कारकुनों को शामिल करने के इम्कान पर बहस शुरू कर दी है। ये शोबा कारकुनों की शदीद किल्लत का शिकार है। सिक्योरिटी सर्विसेज का कानून फिलहाल मुस्तकिल रिहाइश के हामिल गैर मुल्की रिहायशियों, जापानी शहरियों के शुरकाए हयात और दीगर कुछ अफराद को इस सनद में काम करने की इजाजत देता है। माहरीन का यह पैनल, जिसमें एक सिक्योरिटी सर्विस एसोसिएशन के एक सीनियर ओहदेदार, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और एक वकील शामिल हैं, बुध के रोज टोक्यो में अपने इफ्तिताही इजलास के लिए जमा हुआ। खास तौर पर इस बात पर बहस की कि आया गैर मुल्की शहरियों को मखसूस हुनरमंद कारकुन प्रोग्राम और महारत के फरोग के लिए रोजगार प्रोग्राम के तहत सिक्योरिटी के शोबे में काम करने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं। नेशनल पुलिस एजेंसी के कम्युनिटी सेफ्टी ब्यूरो के सरबराह यामादा योशिताका ने कहा कि चूंकि सिक्योरिटी की सनत गैर मुल्की कारकुनों से पूरी तरह फायदा उठाने से कासिर है, इसलिए वो चाहते हैं कि पैनल के अरकान मुख्तलिफ जावियों से ऐसे लोगों को कबूल करने पर सरगर्म बहस करें। नेशनल पुलिस एजेंसी ने इशारा किया है कि मजदूरों की किल्लत के साथ साथ सिक्योरिटी की सनत को अफरादी कुव्वत की उम्र रसीदगी का भी सामना है, जहां इसके तकरीबन निसफ कारकुनों की उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है। पैनल इस बात पर बहस करेगा कि गैर मुल्की कारकुनों को किन सिक्योरिटी खिदमात में काम करने की इजाजत दी जाएगी और वो एक ऐसा निजाम वजा करेगा जो गैर मुल्की कारकुनों को मुतल्लिका तजर्बा और महारत हासिल करने में मदद फराहम करे। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान की वजीर आजम ताकायची सनाए ने अपनी काबीना में रद्दोबदल करते हुए बास मरकजी वुजरा को ओहदों पर बरकरार रखा है। चीफ काबीना सेक्रेटरी किहारा मिनोरू ने जुमेरात की सपहर नई काबीना के ओहदेदारों का ऐलान किया। और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने ईरान और अमरीका पर मंतकी और तहमुल मिजाज रहने पर जोर देते हुए दोनों फरीकों से बातचीत का अमल शुरू करने की अपील की है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 18 सितंबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। बैंक ऑफ जापान बीओजे ने अपनी मूल ब्याज दर में 1/4% अंक की वृद्धि करते हुए इसे लगभग 1.25% कर दिया है, जो करीब 31 वर्षों में सर्वोच्च स्तर है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को अपनी 2 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक के समापन पर यह घोषणा की। 3 महीनों में ये पहली वृद्धि है, जो ब्याज दर बढ़ोतरी की रफ्तार में तेजी का संकेत भी देती है। बैंक लगभग हर 6 महीने में ब्याज दर बढ़ाता आया है। ब्याज दर में इस बढ़ोतरी की अपेक्षा की जा रही थी, क्योंकि बैंक ने संकेत दिया था कि वो कीमतों में अचानक वृद्धि के जोखिम से निपटेगा। गवर्नर उएदा काजुओ शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इस कदम के बारे में बताएंगे और सवालों के जवाब देंगे। जापान के आत्मरक्षा बल एसडीएफ ने इंडोनेशिया में फैल रही जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वायु अग्निशमन अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को एसडीएफ के हेलीकॉप्टरों ने समुद्र से पानी भरकर उसे दावानल प्रभावित क्षेत्रों पर छिड़का। एसडीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि पूरे इलाके में धुएं की वजह से बहुत कम दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थितियों में वायु अग्निशमन एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण अभियान बन गया है। इससे पहले जापान सरकार ने आग बुझाने के लिए एक परिवहन पोत कालीमांतान भेजा था, जिस पर 3 हेलीकॉप्टर लदे थे। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार एसडीएफ ने पहली बार देश से बाहर किसी अग्निशमन अभियान में भाग लिया है। इंडोनेशिया सरकार के अनुसार कम से कम 2000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दावानल से प्रभावित हुआ है। दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में जुलाई के भीषण भूकंप के बाद क्यूशू शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का परिचालन पूरी तरह बहाल हो गया है। कुमामोतो और शिन मिनामाता स्टेशनों के बीच मरम्मत का काम पूरा हो गया है। गौरतलब है कि ये रेल लाइन का वो आखिरी हिस्सा था जहां सेवाएं स्थगित पड़ी थीं। 52 दिनों में पहली बार शुक्रवार सुबह क्यूशू शिंकानसेन की पूरी लाइन पर सेवाएं फिर से शुरू हो गई। 28 जुलाई के भूकंप के बाद क्यूशू शिंकानसेन ने सभी सेवाएं स्थगित कर दी थीं। हाकाता और कुमामोतो स्टेशनों के बीच जुलाई के अंत तक तथा शिन मिनामाता और खागोशिमा चुओ स्टेशनों के बीच 7 अगस्त को परिचालन बहाल हुआ था, लेकिन कुमामोतो और शिन मिनामाता स्टेशनों के बीच सेवा स्थगित रही, क्योंकि पटरियों और सुविधाओं सहित 1000 से अधिक स्थानों पर क्षति का पता चला था।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार मिशन के अनुसार ये मानने के पर्याप्त आधार हैं कि अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में दक्षिणी ईरान स्थित एक स्कूल पर मिसाइल हमला करके युद्ध अपराध किया है। ईरान के संबंध में मानवाधिकार परिषद के तथ्य खोजी मिशन ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट जारी की। इस मिशन ने फरवरी में हॉर्मुज़गान प्रांत के मीनाब स्थित एक प्राथमिक विद्यालय पर हुए हमले की जांच की, जिसमें बच्चों सहित कम से कम 160 लोग मारे गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी थी कि अमरीकी सेना ने गलती से पुराने डाटा के आधार पर अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। संयुक्त राष्ट्र के इस जांच दल ने पाया कि ये प्राथमिक विद्यालय उन इमारतों में चलाया जा रहा था जो पहले ईरान की विशिष्ट सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की थी। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ये पुष्टि करने के यथासंभव प्रयास करने के अपने दायित्व में विफल रहा कि ये एक सैन्य लक्ष्य था या नहीं, और नागरिक ढांचे पर हमला करने के पर्याप्त जोखिम से अवगत होने के बावजूद उसने ये हवाई हमला किया। मिशन को ये मानने के पर्याप्त आधार मिले हैं कि अमेरिका ने अंधाधुंध हमले करके युद्ध अपराध किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आम लोग हताहत हुए और नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचा। नागोया शहर में शनिवार को एशियाई खेलों के उद्घाटन से पहले उत्तर कोरिया के खेल मंत्री जापान पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि करीब 8 वर्षों में किसी उत्तर कोरियाई मंत्री की ये पहली जापान यात्रा है। किम इल गुक बृहस्पतिवार को मध्यवर्ती जापान के आईजी प्रीफेक्चर के च्यूबू सेंट्रियर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर किम ने जापान में कोरियाई निवासियों के संगठन के अधिकारियों से हाथ मिलाया। हवाई अड्डे के निकास द्वार पर कोरिया विश्वविद्यालय के छात्रों सहित लगभग 80 लोगों ने उनका स्वागत किया। इससे पहले उन्होंने नवंबर 2018 में उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में अन्य देशों के ओलंपिक समिति सदस्यों की बैठक में भाग लेने के लिए जापान का दौरा किया था। उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर जापान द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत जापान सैद्धांतिक रूप से उत्तर कोरियाई नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और अन्य लोगों को छूट दी जाती है। एनएचके को पता चला है कि अमेरिका ने एक बार फिर जापान से आग्रह किया है कि वो अमेरिकी आलूओं के लिए घरेलू बाजार पूरी तरह खोलने की प्रक्रियाओं में तेजी लाए। सूत्रों के अनुसार इस महीने के शुरू में अमेरिका दौरे पर गए जापान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में इस पर चर्चा हुई। बीमारियों और कीटों के खतरे को देखते हुए जापान ने कच्चे आलूओं के अधिकांश आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन अमरीकी अनुरोध के बाद जापान का कृषि मंत्रालय अब प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार की बैठक में मंत्रालय ने संबंधित बीमारियों और कीटों की पहचान की। इसके बाद जोखिम कम करने के ठोस उपायों पर चर्चा की जाएगी। अमरीका के आलू उद्योग से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि जापान ने अमरीका के अनुरोध का जवाब देने में बहुत अधिक समय लगा दिया है। जापान के आलू किसान और अन्य लोग प्रतिबंध हटाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे देश के कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का कहना है कि वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।
1: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। बैंक ऑफ जापान बीओजे ने अपनी मूल ब्याज दर में 1/4% अंक की वृद्धि करते हुए इसे लगभग 1.25% कर दिया है, जो करीब 31 वर्षों में सर्वोच्च स्तर है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को अपनी 2 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक के समापन पर ये घोषणा की। 3 महीनों में ये पहली वृद्धि है, जो ब्याज दर बढ़ोतरी की रफ्तार में तेजी का संकेत भी देती है। बैंक लगभग हर 6 महीने में ब्याज दर बढ़ाता आया है। ब्याज दर में इस बढ़ोतरी की अपेक्षा की जा रही थी, क्योंकि बैंक ने संकेत दिया था कि वो कीमतों में अचानक वृद्धि के जोखिम से निपटेगा। गवर्नर उएदा खाजुओ शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इस कदम के बारे में बताएंगे और सवालों के जवाब देंगे।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 29वें पाठ में आप कहीं जाने का मकसद बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, चीनी फोटोग्राफर मिया और हारूसान हाउस की मकान मालकिन हारू जी बातें कर रहे हैं। मिया रविवार को कामाकुरा के एक मंदिर में पियानो प्रस्तुति देखने गई थी। वो बाकी दोनों को वहाँ की तस्वीरें दिखा रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 29वें पाठ की बातचीत।
2: निचियोबी नी पियानो नो एनसो ओ किकी नी किमाशिता।
3: दो देशिता का?
2: सुबारशी कात्ता देसु।
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने पियानो प्रस्तुति के बारे में बताया।
2: निचियोबी नी पियानो नो एनसो ओ किकी नी किमाशिता।
1: रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
0: ये सुनकर हारूजी ने पूछा,
3: दो देश्ता का?
1: कैसी थी?
0: मिया ने उत्तर दिया,
2: सुबारशी कात्ता देसु।
1: बहुत अच्छी थी।
0: तब हारूजी ने कहा,
3: सोरे वा योकात्ता देसु ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: उसके बाद मिया उन्हें पियानो वादक की तस्वीरें दिखाने लगी।
2: शशी वो तकसन तोरीमाश्ता।
1: बहुत सारी तस्वीरें खींची।
2: मीते कुदासाई।
1: देखिए,
0: तस्वीर देखकर ताम हैरान हो गई।
2: आ, कोरे, यूकी सान।
1: अरे, ये तो यूकी जी हैं।
0: हारू जी के सेंसर ने ताम की आवाज से भांप लिया कि कुछ बात है, तो उनके गाल टिमटिमाने लगे। उन्होंने पूछा,
3: यूकी सान?
1: यूकी जी?
0: वो तस्वीर पियानो वादक यूकी की थी, जिससे ताम जापान में मिलना चाहती है। लगता है कि अब जल्द ही दोनों की मुलाकात होने वाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: पियानो नो एनसो ओ किकी नी किमाशिता,
1: यानी पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी। ये वाक्य सीखकर आप कहीं जाने का उद्देश्य बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: पियानो
0: का अर्थ है वाद्य यंत्र पियानो और
3: एनसो
0: का अर्थ है प्रस्तुति। इसलिए
3: पियानो नो एनसो
0: का मतलब हुआ पियानो प्रस्तुति।
1: उसके बाद लगा है कर्म कारक ओ, उसके बाद आया है
3: किकिनी,
1: जिसका अर्थ है सुनने के लिए, और
3: इकिमाशिता
1: है क्रिया
3: इक,
1: यानी जाना का विनम्र भूतकाल रूप।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
3: किकिनी इकिमाशिता
0: यानी सुनने गई थी में
3: किकिनी
0: बना है क्रिया
3: किक
0: यानी सुनना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
3: किकिमास।
1: उसमें से मास हटाया तो बना
3: किकी,
1: और मकसद बताने के लिए उसमें जोड़ दिया कारक नी।
0: तो कहीं जाने का उद्देश्य बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाइए और नी जोड़ दीजिए।
1: आज के वाक्य में उद्देश्य था पियानो प्रस्तुति सुनना, इसलिए मिया ने कहा
3: पियानो नो एनसो किकिनी,
1: और उसके बाद जोड़ा
3: इकिमाशिता।
0: तो अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
3: किकिनी इकिमाशिता, पियानो नो एनसो किकिनी इकिमाशिता।
1: और अब सुनते हैं एक छोटी सी बातचीत जिसमें एक महिला कहीं जाने का मकसद बता रही है।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने पूछा,
4: क्यों दोको नी इकिमाशिता का,
1: आज कहाँ गई थी।
0: इसमें
3: क्यों
0: का अर्थ है आज और
3: दोको
0: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका मतलब है कहाँ।
1: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: कपड़े खरीदने हाराजुकु गई थी।
0: हाराजुकु में कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं जहां युवा नए फैशन के कपड़े खरीदने जाते हैं।
2: फुकु
0: का अर्थ है कपड़े।
2: काईनी
0: बना है क्रिया
2: काउ
0: यानी खरीदना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
2: काईमास।
1: उसमें से मास हटाकर बना
2: काई
1: और उसमें जुड़ गया नी। इससे पता चलता है कि वो महिला हाराजुकु में किस उद्देश्य से गई थी।
0: तो अब ये बातचीत फिर से सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
3: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का? हाराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता। हाराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सुशी खाने गए थे। सुशी को जापानी भाषा में भी कहेंगे
2: सुशी।
1: खाना के लिए जापानी भाषा में क्रिया है
2: थाबेरु
1: और उसका मास रूप है
2: थाबेमास।
1: उसमें से मास हटाएंगे तो बनेगा
2: थाबे।
1: तो कोशिश कीजिए।
5: सुशी ओ थाबे नी इकिमाश्ता। सुशी ओ थाबे नी इकिमाश्ता।
0: और अब याद कर लीजिए कुछ संबंधित शब्द। आज हम आपको सिखा रहे हैं सप्ताह के दिनों के नाम। आप भी साथ साथ बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: सोमवार है
2: केत्सुयोबी।
1: मंगलवार है
2: कायोबी।
1: बुधवार है
2: सुयोबी।
1: बृहस्पतिवार है
2: मुकुयोबी।
1: शुक्रवार है
2: कियोबी।
1: शनिवार है
2: दोयोबी।
1: और रविवार है
2: निचियोबी।
0: आज की बातचीत में मिया ने कहा था
3: निचियोबी नी पियानो नो एंसो ओ किकी नी इकिमाश्ता।
0: यानी वो रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
4: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
4: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
6: あ、これゆうきさん。
4: ゆうきさん？
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कामाकुरा की, जहां मिया पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: कामाकुरा टोक्यो से रेलगाड़ी से लगभग एक घंटे की दूरी पर है, लेकिन वहां पहुंचकर लगता है जैसे हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। लगभग 800 वर्ष पहले वहाँ जापान का पहला सामुराई शासन शुरू हुआ था।
0: वहाँ का त्सुरुगाओ का हाचिमांगू श्राइन मिनामोतो सामुराई परिवार से संबंधित शिंतो मंदिर है। शहर के दूसरे सिरे पर भगवान बुद्ध की 11 मीटर ऊंची विशालकाय प्रतिमा भी है।
1: लेकिन कामाकुरा सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही नहीं, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। वहाँ आप पहाड़ियों की चढ़ाई कर सकते हैं और मौसम के अनुसार चेरी या फिर हाइड्रेंजिया के फूलों या शरद के रंग बिरंगे पत्तों का भी आनंद ले सकते हैं।
0: इनके अलावा आप प्यारे और दिलचस्प कैफे और दुकानों में भी जा सकते हैं।
1: कामाकुरा में एक तरफ समुद्र भी है, लोग वहाँ सर्फिंग करने जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एनोशिमा द्वीप पड़ता है, जिस पर आधारित पारंपरिक लकड़ी की छपाई वाला चित्र भी मौजूद है।
0: प्यारी सी एनोदेन रेलगाड़ी में सवार होकर आप एनोशिमा जाते हुए समुद्र की खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: देखते हैं अगले पाठ में ताम की यूकी से मुलाकात हो पाती है या नहीं। तब तक के लिए सायोनारा।
7: ラジオ日本です。東京からお送りします。 This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 18 सितंबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। बैंक ऑफ जापान बीओजे ने अपनी मूल ब्याज दर में 1/4% अंक की वृद्धि करते हुए इसे लगभग 1.25% कर दिया है, जो करीब 31 वर्षों में सर्वोच्च स्तर है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को अपनी 2 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक के समापन पर यह घोषणा की। 3 महीनों में यह पहली वृद्धि है, जो ब्याज दर बढ़ोतरी की रफ्तार में तेजी का संकेत भी देती है। बैंक लगभग हर 6 महीने में ब्याज दर बढ़ाता आया है। ब्याज दर में इस बढ़ोतरी की अपेक्षा की जा रही थी, क्योंकि बैंक ने संकेत दिया था कि वो कीमतों में अचानक वृद्धि के जोखिम से निपटेगा। गवर्नर उएदा खाजुओ शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इस कदम के बारे में बताएंगे और सवालों के जवाब देंगे। जापान के आत्मरक्षा बल एसडीएफ ने इंडोनेशिया में फैल रही जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वायु अग्निशमन अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को एसडीएफ के हेलीकॉप्टरों ने समुद्र से पानी भरकर उसे दावानल प्रभावित क्षेत्रों पर छिड़का। एसडीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि पूरे इलाके में धुएं की वजह से बहुत कम दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थितियों में वायु अग्निशमन एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण अभियान बन गया है। इससे पहले जापान सरकार ने आग बुझाने के लिए एक परिवहन पोत कालीमांतान भेजा था, जिस पर 3 हेलीकॉप्टर लदे थे। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार एसडीएफ ने पहली बार देश से बाहर किसी अग्निशमन अभियान में भाग लिया है। इंडोनेशिया सरकार के अनुसार कम से कम 2000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दावानल से प्रभावित हुआ है। दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में जुलाई के भीषण भूकंप के बाद क्यूशू शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का परिचालन पूरी तरह बहाल हो गया है। कुमामोतो और शिन मिनामाता स्टेशनों के बीच मरम्मत का काम पूरा हो गया है। गौरतलब है कि ये रेल लाइन का वो आखिरी हिस्सा था जहां सेवाएं स्थगित पड़ी थीं। 52 दिनों में पहली बार शुक्रवार सुबह क्यूशू शिंकानसेन की पूरी लाइन पर सेवाएं फिर से शुरू हो गई। 28 जुलाई के भूकंप के बाद क्यूशू शिंकानसेन ने सभी सेवाएं स्थगित कर दी थीं। हाकाता और कुमामोतो स्टेशनों के बीच जुलाई के अंत तक तथा शिन मिनामाता और खागोशिमा चुओ स्टेशनों के बीच 7 अगस्त को परिचालन बहाल हुआ था, लेकिन कुमामोतो और शिन मिनामाता स्टेशनों के बीच सेवा स्थगित रही, क्योंकि पटरियों और सुविधाओं सहित 1000 से अधिक स्थानों पर क्षति का पता चला था।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार मिशन के अनुसार ये मानने के पर्याप्त आधार हैं कि अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में दक्षिणी ईरान स्थित एक स्कूल पर मिसाइल हमला करके युद्ध अपराध किया है। ईरान के संबंध में मानवाधिकार परिषद के तथ्य खोजी मिशन ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट जारी की। इस मिशन ने फरवरी में हॉर्मुज़गान प्रांत के मीनाब स्थित एक प्राथमिक विद्यालय पर हुए हमले की जांच की, जिसमें बच्चों सहित कम से कम 160 लोग मारे गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी थी कि अमरीकी सेना ने गलती से पुराने डाटा के आधार पर अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। संयुक्त राष्ट्र के इस जांच दल ने पाया कि ये प्राथमिक विद्यालय उन इमारतों में चलाया जा रहा था जो पहले ईरान की विशिष्ट सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की थी। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ये पुष्टि करने के यथासंभव प्रयास करने के अपने दायित्व में विफल रहा कि ये एक सैन्य लक्ष्य था या नहीं, और नागरिक ढांचे पर हमला करने के पर्याप्त जोखिम से अवगत होने के बावजूद उसने ये हवाई हमला किया। मिशन को ये मानने के पर्याप्त आधार मिले हैं कि अमेरिका ने अंधाधुंध हमले करके युद्ध अपराध किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आम लोग हताहत हुए और नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचा। नागोया शहर में शनिवार को एशियाई खेलों के उद्घाटन से पहले उत्तर कोरिया के खेल मंत्री जापान पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि करीब 8 वर्षों में किसी उत्तर कोरियाई मंत्री की यह पहली जापान यात्रा है। किम इल गुक बृहस्पतिवार को मध्यवर्ती जापान के आईजी प्रीफेक्चर के च्यूबू सेंट्रियर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर किम ने जापान में कोरियाई निवासियों के संगठन के अधिकारियों से हाथ मिलाया। हवाई अड्डे के निकास द्वार पर कोरिया विश्वविद्यालय के छात्रों सहित लगभग 80 लोगों ने उनका स्वागत किया। इससे पहले उन्होंने नवंबर 2018 में उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में अन्य देशों के ओलंपिक समिति सदस्यों की बैठक में भाग लेने के लिए जापान का दौरा किया था। उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर जापान द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत जापान सैद्धांतिक रूप से उत्तर कोरियाई नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और अन्य लोगों को छूट दी जाती है। एनएचके को पता चला है कि अमेरिका ने एक बार फिर जापान से आग्रह किया है कि वो अमेरिकी आलूओं के लिए घरेलू बाजार पूरी तरह खोलने की प्रक्रियाओं में तेजी लाए। सूत्रों के अनुसार इस महीने के शुरू में अमेरिका दौरे पर गए जापान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में इस पर चर्चा हुई। बीमारियों और कीटों के खतरे को देखते हुए जापान ने कच्चे आलूओं के अधिकांश आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन अमरीकी अनुरोध के बाद जापान का कृषि मंत्रालय अब प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार की बैठक में मंत्रालय ने संबंधित बीमारियों और कीटों की पहचान की। इसके बाद जोखिम कम करने के ठोस उपायों पर चर्चा की जाएगी। अमरीका के आलू उद्योग से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि जापान ने अमरीका के अनुरोध का जवाब देने में बहुत अधिक समय लगा दिया है। जापान के आलू किसान और अन्य लोग प्रतिबंध हटाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे देश के कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का कहना है कि वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।
1: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। बैंक ऑफ जापान बीओजे ने अपनी मूल ब्याज दर में 1/4% अंक की वृद्धि करते हुए इसे लगभग 1.25% कर दिया है, जो करीब 31 वर्षों में सर्वोच्च स्तर है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को अपनी 2 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक के समापन पर यह घोषणा की। 3 महीनों में ये पहली वृद्धि है, जो ब्याज दर बढ़ोतरी की रफ्तार में तेजी का संकेत भी देती है। बैंक लगभग हर 6 महीने में ब्याज दर बढ़ाता आया है। ब्याज दर में इस बढ़ोतरी की अपेक्षा की जा रही थी, क्योंकि बैंक ने संकेत दिया था कि वो कीमतों में अचानक वृद्धि के जोखिम से निपटेगा। गवर्नर उएदा खाजुओ शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इस कदम के बारे में बताएंगे और सवालों के जवाब देंगे।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 29वें पाठ में आप कहीं जाने का मकसद बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, चीनी फोटोग्राफर मिया और हारूसान हाउस की मकान मालकिन हारू जी बातें कर रहे हैं। मिया रविवार को कामाकुरा के एक मंदिर में पियानो प्रस्तुति देखने गई थी। वो बाकी दोनों को वहाँ की तस्वीरें दिखा रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 29वें पाठ की बातचीत।
2: निचियोबी नी पियानो नो एनसो ओ किकी नी किमाशिता।
3: दो देशिता का?
2: सुबारशी कात्ता देसु।
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने पियानो प्रस्तुति के बारे में बताया।
2: निचियोबी नी पियानो नो एनसो ओ किकी नी किमाशिता।
1: रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
0: ये सुनकर हारूजी ने पूछा,
3: दो देश्ता का?
1: कैसी थी?
0: मिया ने उत्तर दिया,
2: सुबारशी कात्ता देसु।
1: बहुत अच्छी थी।
0: तब हारूजी ने कहा,
3: सोरे वा योकात्ता देसु ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: उसके बाद मिया उन्हें पियानो वादक की तस्वीरें दिखाने लगी।
2: शशी वो तकसन तोरीमाश्ता।
1: बहुत सारी तस्वीरें खींची।
2: मीते कुदासाई।
1: देखिए,
0: तस्वीर देखकर ताम हैरान हो गई।
2: आ, कोरे, यूकी सान।
1: अरे, ये तो यूकी जी हैं।
0: हारूजी के सेंसर ने ताम की आवाज से भांप लिया कि कुछ बात है, तो उनके गाल टिमटिमाने लगे। उन्होंने पूछा,
3: यूकी सान?
1: यूकी जी?
0: वो तस्वीर पियानो वादक यूकी की थी, जिससे ताम जापान में मिलना चाहती है। लगता है कि अब जल्द ही दोनों की मुलाकात होने वाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: पियानो नो एनसो ओ किकी नी किमाशिता,
1: यानी पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी। ये वाक्य सीखकर आप कहीं जाने का उद्देश्य बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: पियानो
0: का अर्थ है वाद्य यंत्र पियानो और
4: एनसो
0: का अर्थ है प्रस्तुति। इसलिए
4: पियानो नो एनसो
0: का मतलब हुआ पियानो प्रस्तुति।
1: उसके बाद लगा है कर्म कारक ओ, उसके बाद आया है
4: किकिनी,
1: जिसका अर्थ है सुनने के लिए, और
4: इकिमाशिता
1: है क्रिया
4: इक,
1: यानी जाना का विनम्र भूतकाल रूप।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
4: किकिनी इकिमाशिता
0: यानी सुनने गई थी में
4: किकिनी
0: बना है क्रिया
4: किक
0: यानी सुनना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
4: किकिमास।
1: उसमें से मास हटाया तो बना
4: किकी,
1: और मकसद बताने के लिए उसमें जोड़ दिया कारक नी।
0: तो कहीं जाने का उद्देश्य बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाइए और नी जोड़ दीजिए।
1: आज के वाक्य में उद्देश्य था पियानो प्रस्तुति सुनना, इसलिए मिया ने कहा
4: पियानो नो एनसो किकिनी,
1: और उसके बाद जोड़ा
4: इकिमाशिता।
0: तो अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
4: किकी नी इकिमाशिता, पियानो नो एनसो ओ किकी नी इकिमाशिता।
1: और अब सुनते हैं एक छोटी सी बातचीत जिसमें एक महिला कहीं जाने का मकसद बता रही है।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने पूछा,
3: क्यों दोको नी इकिमाशिता का,
1: आज कहाँ गई थी।
0: इसमें
4: क्यों
0: का अर्थ है आज और
4: दोको
0: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका मतलब है कहाँ।
1: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
4: 原宿に服を買いに行きました。
1: कपड़े खरीदने हाराजुकु गई थी।
0: हाराजुकु में कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं जहां युवा नए फैशन के कपड़े खरीदने जाते हैं।
4: फुकु
0: का अर्थ है कपड़े।
4: काईनी
0: बना है क्रिया
4: काउ
0: यानी खरीदना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
4: काईमास।
1: उसमें से मास हटाकर बना
4: काई
1: और उसमें जुड़ गया नी। इससे पता चलता है कि वो महिला हाराजुकु में किस उद्देश्य से गई थी।
0: तो अब ये बातचीत फिर से सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
4: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का? हाराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता। हाराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सुशी खाने गए थे। सुशी को जापानी भाषा में भी कहेंगे
4: सुशी।
1: खाना के लिए जापानी भाषा में क्रिया है
4: थाबेरु
1: और उसका मास रूप है
4: थाबेमास।
1: उसमें से मास हटाएंगे तो बनेगा
4: थाबे।
1: तो कोशिश कीजिए।
5: सुशी ओ थाबे नी इकिमाश्ता। सुशी ओ थाबे नी इकिमाश्ता।
0: और अब याद कर लीजिए कुछ संबंधित शब्द। आज हम आपको सिखा रहे हैं सप्ताह के दिनों के नाम। आप भी साथ साथ बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: सोमवार है
4: केत्सुयोबी।
1: मंगलवार है
4: कायोबी।
1: बुधवार है
4: सुयोबी।
1: बृहस्पतिवार है
4: मुकुयोबी।
1: शुक्रवार है
4: कियोबी।
1: शनिवार है
4: दोयोबी।
1: और रविवार है
4: निचियोबी।
0: आज की बातचीत में मिया ने कहा था
4: निचियोबी नी पियानो नो एंसो ओ किकी नी इकिमाश्ता।
0: यानी वो रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
6: あ、これ結城さん。
3: 結城さん？
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कामाकुरा की, जहां मिया पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: कामाकुरा टोक्यो से रेलगाड़ी से लगभग एक घंटे की दूरी पर है, लेकिन वहां पहुंचकर लगता है जैसे हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। लगभग 800 वर्ष पहले वहाँ जापान का पहला सामुराई शासन शुरू हुआ था।
0: वहाँ का त्सुरुगाओ का हाचिमांगू श्राइन मिनामोतो सामुराई परिवार से संबंधित शिंतो मंदिर है। शहर के दूसरे सिरे पर भगवान बुद्ध की 11 मीटर ऊंची विशालकाय प्रतिमा भी है।
1: लेकिन कामाकुरा सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही नहीं, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। वहाँ आप पहाड़ियों की चढ़ाई कर सकते हैं और मौसम के अनुसार चेरी या फिर हाइड्रेंजिया के फूलों या शरद के रंग बिरंगे पत्तों का भी आनंद ले सकते हैं।
0: इनके अलावा आप प्यारे और दिलचस्प कैफे और दुकानों में भी जा सकते हैं।
1: कामाकुरा में एक तरफ समुद्र भी है, लोग वहाँ सर्फिंग करने जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एनोशिमा द्वीप पड़ता है, जिस पर आधारित पारंपरिक लकड़ी की छपाई वाला चित्र भी मौजूद है।
0: प्यारी सी एनोदेन रेलगाड़ी में सवार होकर आप एनोशिमा जाते हुए समुद्र की खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: देखते हैं अगले पाठ में ताम की यूकी से मुलाकात हो पाती है या नहीं। तब तक के लिए सायोनारा।
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。 東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के एक मिशन का कहना है कि ये यकीन करने की माकूल वजूहात मौजूद हैं कि अमेरिका ने कबल अज़ीं रवां साल जनूबी ईरान के एक स्कूल पर मोहलिक मिज़ाइल हमला करके जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया। ईरान से मुतालिक इंसानी हकूक़ कौंसिल के हकायक तराश करने वाले एक मिशन ने जुमेरात के रोज़ एक रिपोर्ट जारी की। मिशन ने फरवरी में सूबा हरमुजगान के शहर मीनाप में एक प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले की तहकीकात की, जिसमें बच्चों समेत कम से कम 160 अफराद हलाक हो गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि अमरीकी फौज ने गलती से पुराने डेटा की बुनियाद पर अपना हदफ तय किया था। अक्वामे मुत्तहिदा की तहकीकती टीम ने वाजह किया कि यह प्राइमरी स्कूल ईरान के इलीट फौज यूनिट सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी की तब्दील शुदा इमारत में काम कर रहा था। उसने कहा कि अमरीका ये तस्दीक करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहा कि यह एक फौजी हदफ था और उसने फजाई हमला एक सिविलियन मकाम को निशाना बनाने के काफी खतरे से आगाह होने के बावजूद किया। मिशन ने कहा कि उसे ये यकीन करने की माकूल वजूहात मिली हैं कि अमरीका ने बिला इम्तियाज हमले करने के जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया, जिसके नतीजे में आम शहरी हलाक जख्मी हुए या शहरी मकामात को नुकसान पहुंचा। हफ्ते को नागोया शहर में एशियन गेम्स के आगाज से कबल शुमाली कोरिया के वजीर खेल जापान पहुंच गए हैं। ख्याल किया जा रहा है कि ये तकरीबन 8 सालों में शुमाली कोरिया के किसी वजीर का पहला दौरा जापान है। किम इल गुक को लेकर आने वाला तैयारा जुमेरात को आईची प्रीफेक्चर के चुबू सेंटोरिया बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर उतरा। जापान पहुंचने पर किम ने जापान में मुकीम कोरियाई बाशिंदों की जनरल एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ मुसाफा किया। हवाई अड्डे से बाहर निकलने पर कोरिया यूनिवर्सिटी के तलबा समेत तकरीबन 80 अफराद ने उनका इस्तकबाल किया। इससे कबल उन्होंने नवंबर 2018 में शुमाली कोरिया की कौमी ओलंपिक कमेटी के सदर की हैसियत से दूसरे ममालिक की ओलंपिक कमेटी के अराकीन के साथ इजलास में शिरकत के लिए जापान का दौरा किया था। प्यांगयांग के जौहरी और मिसाइल प्रोग्रामों के खिलाफ पाबंदियों के तहत जापान ने उसूली तौर पर शुमाली कोरियाई बाशिंदों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। ताहम बैन अलाक्वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी और दीगर अफराद को इस पाबंदी से इस्तिस्ना दिया जाता है। NHK को मालूम हुआ है कि अमेरिका ने एक बार फिर जापान पर जोर दिया है कि वो अमेरिकी आलूओं के लिए मुल्की मंडी को मुकम्मल तौर पर खोलने के तरीक़ेकार को तेज़ करे। ज़राए का कहना है कि ये बातचीत उस वक्त हुई जब आला जापानी हुक्काम ने कबल अज़ीं रवां माह अमरीका का दौरा किया था। टोक्यो ने बीमारियों और कीड़ों के खदशात की वजह से ज़्यादातर कच्चे आलुओं की दरामद पर पाबंदी आयद की है। ताहम जापानी वजारत ज़राअत अब अमरीकी दरख्वास्त के बाद पाबंदी हटाने के इस अमल को आगे बढ़ा रही है। तवक्को है कि वजारत जुमे को होने वाली मीटिंग में मुतल्लिका बीमारियों और कीड़ों की निशानदेही करेगी। इसके बाद ये खतरे में कमी के मखसूस इकदामात पर बातचीत की जानिब पेशरफ्त करेगी। अमरीकी आलू की सनत से वाबस्ता कुछ लोगों का कहना है कि जापान को अमरीकी दरख्वास्त का जवाब देने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा है। आलू के जापानी काश्तकार और दीगर ये पाबंदी उठाने की सख्त मुखालफत करते हैं। उनका कहना है कि इससे मुल्क के ज़रई शोबे को शदीद धचका लग सकता है। तहम वजारत का कहना है कि वो साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है।
1: और सामिन, आखिर में आज की अहम खबरों का खुलासा पेश है। बैंक ऑफ जापान BOJ ने अपनी कलीदी शराय सूद को 1/4% बढ़ाकर तकरीबन 1.25% करने का फैसला किया है। ये तकरीबन 31 सालों में बुलंद तरीन सतह है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस यानी SDF ने फजाई तौर पर आग बुझाने की कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है, क्योंकि इंडोनेशिया में जंगलाती आग का एक सिलसिला मुसलसल भड़क रहा है। और जुलाई में जनूब मगरबी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में

0: राम और यूकी दोबारा मिल पाते हैं या नहीं, ये जानिए अगले सबक में।
1: Tokyo からお送りします。
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 18 सितंबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। बैंक ऑफ जापान बीओजे ने अपनी मूल ब्याज दर में 1/4% अंक की वृद्धि करते हुए इसे लगभग 1.25% कर दिया है, जो करीब 31 वर्षों में सर्वोच्च स्तर है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को अपनी 2 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक के समापन पर ये घोषणा की। 3 महीनों में ये पहली वृद्धि है, जो ब्याज दर बढ़ोतरी की रफ्तार में तेजी का संकेत भी देती है। बैंक लगभग हर 6 महीने में ब्याज दर बढ़ाता आया है। ब्याज दर में इस बढ़ोतरी की अपेक्षा की जा रही थी, क्योंकि बैंक ने संकेत दिया था कि वो कीमतों में अचानक वृद्धि के जोखिम से निपटेगा। गवर्नर उएदा खाजुओ शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इस कदम के बारे में बताएंगे और सवालों के जवाब देंगे। जापान के आत्मरक्षा बल एसडीएफ ने इंडोनेशिया में फैल रही जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वायु अग्निशमन अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को एसडीएफ के हेलीकॉप्टरों ने समुद्र से पानी भरकर उसे दावानल प्रभावित क्षेत्रों पर छिड़का। एसडीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि पूरे इलाके में धुएं की वजह से बहुत कम दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थितियों में वायु अग्निशमन एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण अभियान बन गया है। इससे पहले जापान सरकार ने आग बुझाने के लिए एक परिवहन पोत कालीमांतान भेजा था, जिस पर 3 हेलीकॉप्टर लदे थे। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार एसडीएफ ने पहली बार देश से बाहर किसी अग्निशमन अभियान में भाग लिया है। इंडोनेशिया सरकार के अनुसार कम से कम 2000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दावानल से प्रभावित हुआ है। दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में जुलाई के भीषण भूकंप के बाद क्यूशु शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का परिचालन पूरी तरह बहाल हो गया है। कुमामोतो और शिन मिनामाता स्टेशनों के बीच मरम्मत का काम पूरा हो गया है। गौरतलब है कि ये रेल लाइन का वो आखिरी हिस्सा था जहां सेवाएं स्थगित पड़ी थीं। 52 दिनों में पहली बार शुक्रवार सुबह क्यूशु शिंकानसेन की पूरी लाइन पर सेवाएं फिर से शुरू हो गई। 28 जुलाई के भूकंप के बाद क्यूशु शिंकानसेन ने सभी सेवाएं स्थगित कर दी थीं। हाकाता और कुमामोतो स्टेशनों के बीच जुलाई के अंत तक तथा शिन मिनामाता और खागोशिमा चुओ स्टेशनों के बीच 7 अगस्त को परिचालन बहाल हुआ था, लेकिन कुमामोतो और शिन मिनामाता स्टेशनों के बीच सेवा स्थगित रही, क्योंकि पटरियों और सुविधाओं सहित 1000 से अधिक स्थानों पर क्षति का पता चला था।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार मिशन के अनुसार ये मानने के पर्याप्त आधार हैं कि अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में दक्षिणी ईरान स्थित एक स्कूल पर मिसाइल हमला करके युद्ध अपराध किया है। ईरान के संबंध में मानवाधिकार परिषद के तथ्य खोजी मिशन ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट जारी की। इस मिशन ने फरवरी में हॉर्मुज़गान प्रांत के मीनाब स्थित एक प्राथमिक विद्यालय पर हुए हमले की जांच की, जिसमें बच्चों सहित कम से कम 160 लोग मारे गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी थी कि अमरीकी सेना ने गलती से पुराने डाटा के आधार पर अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। संयुक्त राष्ट्र के इस जांच दल ने पाया कि ये प्राथमिक विद्यालय उन इमारतों में चलाया जा रहा था जो पहले ईरान की विशिष्ट सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की थी। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ये पुष्टि करने के यथासंभव प्रयास करने के अपने दायित्व में विफल रहा कि ये एक सैन्य लक्ष्य था या नहीं, और नागरिक ढांचे पर हमला करने के पर्याप्त जोखिम से अवगत होने के बावजूद उसने ये हवाई हमला किया। मिशन को ये मानने के पर्याप्त आधार मिले हैं कि अमेरिका ने अंधाधुंध हमले करके युद्ध अपराध किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आम लोग हताहत हुए और नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचा। नागोया शहर में शनिवार को एशियाई खेलों के उद्घाटन से पहले उत्तर कोरिया के खेल मंत्री जापान पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि करीब 8 वर्षों में किसी उत्तर कोरियाई मंत्री की ये पहली जापान यात्रा है। किम इल गुक बृहस्पतिवार को मध्यवर्ती जापान के आईजी प्रीफेक्चर के च्यूबू सेंट्रियर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर किम ने जापान में कोरियाई निवासियों के संगठन के अधिकारियों से हाथ मिलाया। हवाई अड्डे के निकास द्वार पर कोरिया विश्वविद्यालय के छात्रों सहित लगभग 80 लोगों ने उनका स्वागत किया। इससे पहले उन्होंने नवंबर 2018 में उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में अन्य देशों के ओलंपिक समिति सदस्यों की बैठक में भाग लेने के लिए जापान का दौरा किया था। उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर जापान द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत जापान सैद्धांतिक रूप से उत्तर कोरियाई नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और अन्य लोगों को छूट दी जाती है। एनएचके को पता चला है कि अमेरिका ने एक बार फिर जापान से आग्रह किया है कि वो अमेरिकी आलूओं के लिए घरेलू बाजार पूरी तरह खोलने की प्रक्रियाओं में तेजी लाए। सूत्रों के अनुसार इस महीने के शुरू में अमेरिका दौरे पर गए जापान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में इस पर चर्चा हुई। बीमारियों और कीटों के खतरे को देखते हुए जापान ने कच्चे आलूओं के अधिकांश आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन अमरीकी अनुरोध के बाद जापान का कृषि मंत्रालय अब प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार की बैठक में मंत्रालय ने संबंधित बीमारियों और कीटों की पहचान की। इसके बाद जोखिम कम करने के ठोस उपायों पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका के आलू उद्योग से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि जापान ने अमेरिका के अनुरोध का जवाब देने में बहुत अधिक समय लगा दिया है। जापान के आलू किसान और अन्य लोग प्रतिबंध हटाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे देश के कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का कहना है कि वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।
1: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। बैंक ऑफ जापान बीओजे ने अपनी मूल ब्याज दर में 1/4% अंक की वृद्धि करते हुए इसे लगभग 1.25% कर दिया है, जो करीब 31 वर्षों में सर्वोच्च स्तर है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को अपनी 2 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक के समापन पर यह घोषणा की। 3 महीनों में ये पहली वृद्धि है, जो ब्याज दर बढ़ोतरी की रफ्तार में तेजी का संकेत भी देती है। बैंक लगभग हर 6 महीने में ब्याज दर बढ़ाता आया है। ब्याज दर में इस बढ़ोतरी की अपेक्षा की जा रही थी, क्योंकि बैंक ने संकेत दिया था कि वो कीमतों में अचानक वृद्धि के जोखिम से निपटेगा। गवर्नर उएदा खाजुओ शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इस कदम के बारे में बताएंगे और सवालों के जवाब देंगे।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 29वें पाठ में आप कहीं जाने का मकसद बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, चीनी फोटोग्राफर मिया और हारूसान हाउस की मकान मालकिन हारूजी बातें कर रहे हैं। मिया रविवार को कामाकुरा के एक मंदिर में पियानो प्रस्तुति देखने गई थी। वो बाकी दोनों को वहाँ की तस्वीरें दिखा रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 29वें पाठ की बातचीत।
2: どうでしたか？
3: 素晴らしかったです。
2: それは良かったですね。
3: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
2: ゆうきさん？
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने पियानो प्रस्तुति के बारे में बताया।
2: निचियोबिनी पियानो नो एंसो किकिनी किमाश्ता।
1: रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
0: ये सुनकर हारूजी ने पूछा,
2: दो देश्ता का?
1: कैसी थी?
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: सुबारश्काता देसु।
1: बहुत अच्छी थी।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: सरे वा योकात्ता देसु ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: उसके बाद मिया उन्हें पियानो वादक की तस्वीरें दिखाने लगी।
3: शशियो तकसन तोरिमाश्ता।
1: बहुत सारी तस्वीरें खींची।
3: मीते कुदासाई।
1: देखिए।
0: तस्वीर देखकर ताम हैरान हो गई।
3: आ, कोरे, युकी-सान।
1: अरे, ये तो युकी जी हैं।
0: हारूजी के सेंसर ने ताम की आवाज से भांप लिया कि कुछ बात है, तो उनके गाल टिमटिमाने लगे। उन्होंने पूछा,
2: युकी-सान?
1: युकी जी?
0: वो तस्वीर पियानो वादक युकी की थी जिससे ताम जापान में मिलना चाहती है। लगता है कि अब जल्द ही दोनों की मुलाकात होने वाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: पियानो नो एंसो किकिनी किमाश्ता,
1: यानी पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी। ये वाक्य सीखकर आप कहीं जाने का उद्देश्य बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
2: पियानो
0: का अर्थ है वाद्य यंत्र पियानो और
2: एंसो
0: का अर्थ है प्रस्तुति। इसलिए
2: पियानो नो एंसो
0: का मतलब हुआ पियानो प्रस्तुति।
1: उसके बाद लगा है कर्म कारक ओ। उसके बाद आया है
2: किकिनी,
1: जिसका अर्थ है सुनने के लिए, और
2: इकिमाश्ता
1: है क्रिया
2: इक
1: यानी जाना का विनम्र भूतकाल रूप।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
2: किकिनी इकिमाश्ता
0: यानी सुनने गई थी में
2: किकिनी
0: बना है क्रिया
2: किक
0: यानी सुनना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
2: किकिमास।
1: उसमें से मास हटाया तो बना
2: किकी,
1: और मकसद बताने के लिए उसमें जोड़ दिया कारक नी।
0: तो कहीं जाने का उद्देश्य बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाइए और नी जोड़ दीजिए।
1: आज के वाक्य में उद्देश्य था पियानो प्रस्तुति सुनना, इसलिए मिया ने कहा
2: पियानो नो एंसो किकिनी,
1: और उसके बाद जोड़ा
2: इकिमाश्ता।
0: तो अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
2: किकिनी इकिमाश्ता, पियानो नो एंसो किकिनी इकिमाश्ता।
1: और अब सुनते हैं एक छोटी सी बातचीत जिसमें एक महिला कहीं जाने का मकसद बता रही है।
4: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का?
2: हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने पूछा,
4: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का?
1: आज कहां गई थी?
0: इसमें
2: क्यों
0: का अर्थ है आज और
2: दोको
0: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका मतलब है कहां।
1: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
2: हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता।
1: कपड़े खरीदने हराजुकु गई थी।
0: हराजुकु में कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं जहां युवा नए फैशन के कपड़े खरीदने जाते हैं।
3: फुकु
0: का अर्थ है कपड़े,
3: काई नी
0: बना है क्रिया
3: खाउ
0: यानी खरीदना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
3: काईमास,
1: उसमें से मास हटाकर बना
3: खाई
1: और उसमें जुड़ गया नी। इससे पता चलता है कि वो महिला हराजुकु में किस उद्देश्य से गई थी।
0: तो अब ये बातचीत फिर से सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
2: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का? हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता। हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सुशी खाने गए थे। सुशी को जापानी भाषा में भी कहेंगे
3: सुशी।
1: खाना के लिए जापानी भाषा में क्रिया है
3: थाबेरु
1: और उसका मास रूप है
3: थाबेमास।
1: उसमें से मास हटाएंगे तो बनेगा
3: थाबे।
1: तो कोशिश कीजिए।
5: सुशी ओ थाबे नी इकिमाश्ता।
0: और अब याद कर लीजिए कुछ संबंधित शब्द। आज हम आपको सिखा रहे हैं सप्ताह के दिनों के नाम। आप भी साथ साथ बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: सोमवार है
3: केत्सुयोबी।
1: मंगलवार है
3: कायोबी।
1: बुधवार है
3: सुयोबी।
1: बृहस्पतिवार है
3: मुकुयोबी।
1: शुक्रवार है
3: कियोबी।
1: शनिवार है
3: दोयोबी।
1: और रविवार है
3: निचियोबी।
0: आज की बातचीत में मिया ने कहा था
3: निचियोबी नी पियानो नो एंसो ओ किकी नी इकिमाश्ता,
0: यानी वो रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。 どうでしたか?
3: 素晴らしかったです。
2: それは良かったですね。 写真をたくさん撮りました。 見てください。 あ、これ、 ゆうきさん。 ゆうきさん?
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कामाकुरा की, जहां मिया पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: कामाकुरा टोक्यो से रेलगाड़ी से लगभग एक घंटे की दूरी पर है, लेकिन वहां पहुंचकर लगता है जैसे हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। लगभग 800 वर्ष पहले वहाँ जापान का पहला सामुराई शासन शुरू हुआ था।
0: वहाँ का त्सुरुगाओका हाचिमांगु श्राइन मिनामोतो सामुराई परिवार से संबंधित शिंतो मंदिर है। शहर के दूसरे सिरे पर भगवान बुद्ध की 11 मीटर ऊंची विशालकाय प्रतिमा भी है।
1: लेकिन कामाकुरा सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही नहीं, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। वहाँ आप पहाड़ियों की चढ़ाई कर सकते हैं और मौसम के अनुसार चेरी या फिर हाइड्रेंजिया के फूलों या शरद के रंग बिरंगे पत्तों का भी आनंद ले सकते हैं।
0: इनके अलावा आप प्यारे और दिलचस्प कैफे और दुकानों में भी जा सकते हैं।
1: कामाकुरा में एक तरफ समुद्र भी है, लोग वहाँ सर्फिंग करने जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एनोशिमा द्वीप पड़ता है, जिस पर आधारित पारंपरिक लकड़ी की छपाई वाला चित्र भी मौजूद है।
0: प्यारी सी एनोदेन रेलगाड़ी में सवार होकर आप एनोशिमा जाते हुए समुद्र की खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: देखते हैं अगले पाठ में ताम की यूकी से मुलाकात हो पाती है या नहीं। तब तक के लिए सायोनारा।
6: Radio Japan, Tokyo.

ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अक्वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के एक मिशन का कहना है कि ये यकीन करने की माकूल वजूहात मौजूद हैं कि अमरीका ने कबल अज़ीं रवां साल जनूबी ईरान के एक स्कूल पर मोहलिक मिज़ाइल हमला करके जंगी जुर्म का इरतकाब किया। ईरान से मुतालिक इंसानी हुकूक कौंसिल के हकायक तलाश करने वाले एक मिशन ने जुमेरात के रोज़ एक रिपोर्ट जारी की। मिशन ने फरवरी में सूबा हरमुजगान के शहर मीनाप में एक प्राइमरी स्कूल पर

0: और यूकी दोबारा मिल पाते हैं या नहीं, ये जानिए अगले सबक में।
1: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.